का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीच किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रविवार का दिन है, एतवार का दिन, सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश

सेवा में। चले एक भजन पेश किया जा रहा है फिल्म बजरंग बली का, और आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन पेश की गई फिल्म बजरंग बली का ये सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। गुरमीत और मीना की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है। गुरमीत और

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हरिओम शरण और नंदनी शरण जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रंजी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे चित्रा सिंह की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर और सुंदर भजन चित्रा सिंह की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

तरफ से हरि को सादर नमस्कार और आदाब छु। प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीश किया जा रहा।

प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी 9 बजे से लेकर के

तो चलिए आप सभी को हम स्वागत कर रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चलते हैं प्रोग्राम में पहला गाना की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए एक और खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव के जरिए मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए एक गीत पेश किया जा रहा है और वो भी द माइटी मुकेश की आवाज में, माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेज में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में अपने हुए पर आए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुखीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीते कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर और अनुराधा पोटवाल के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिल्म का नाम है मरिया।

गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सब प्यार की बातें करते हैं मतलब ये दुनिया फिल्म का गीत पेश की गई माइटी मुकेश की आवाज में यूट्रेख लाइट से रहें गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया है तार के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना रोटरडम शहर से राधा भी काफी दिनों के बाद आज सुबह स्टूडियो की ओर तार किया और एक गाना बस मांग किया है रोटरडम शहर की रहने वाली राधा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम चा चा चा चले मिलकर सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था चा चा चा। उसी फिल्म का गाना रोटरडम की रहने वाली राधा राधा ने मांग किया और इसी तरह से पेश की गई आश्रम में थे राधा। गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। अब ऐसे बहुत से सुनने वालों होते हैं जो रोटरडम शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम बस सुनते हैं, वहां पर भी डेयाबे ब्लूज द्वारा हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है, यानी कि प्रोविंसी साउथ होलैंड में डेयाबे ब्लूज रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम भी सुनाई देता है। जिस तरह से खासतौर पर प्रदीप भी प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में बस सुनते हैं और एक गाना मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाज में बस मांग किया है मुकेश एंड आरती मुखर्जी, वाडियो में खो जाए हम तुम। नंबर आज की सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में मुकेश एंड आरती।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस पेश की गई किस और आरती मुखर्जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना और खासतौर पर रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप का खासतौर पर मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आश्रो मीठे गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों बस दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों खबर आपने सुना होगा, रिक्लाम आपने सुना होगा कि आने वाले वीकेंड 5 and 6 June फॉर द 24th keer मिलन ऑल टुगेदर फेस्टिवल होने वाले हैं। ऑल टुगेदर फेस्टिवल होने वाले हैं यानी कि मिलन इन बारन उत्तराखंड शहर के बिल्कुल करीब में है बारन। आप तो जानते हैं पलाइस सुस्दैक सुस्त उसी करीब में बारन होते हैं। तो वहां पर आने वाले वीकेंड 5 and 6 June हर साल की तरह फॉर द 24th ईयर हंगामा होने वाले है ऑल टुगेदर फेस्टिवल यानी कि मिलन मेट हिलफेल क्रैम्पियस 12 से लेकर के रोटी रोल और ऐसे बहुत से खाने यहां पर रहेंगे। ढेर से क्रैम्पियस रहेंगे हिलफेल 8 inches और हिलफेल पोडियम प्रोग्राम यहां पर रहेंगे और वो भी आने वाले वीकेंड फ्राइडे 5 and Saturday 6 June। और आपको स्पेशल खबर किया जा रहा है, मैंने आपको खबर किया कि यहां पर ढेर सा पोडियम प्रोग्राम रहेंगे स्पेशल आप सभी के लिए 7 June वना 5 स्मिदाग्स तोत 7 सावंस यहां पर रहेंगे म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस मेट लेडी संजना मुका एंड नेचुरल ब्लैक बॉय मिस्टर ब्लैक यहां पर भी रहेंगे। शाम में 5 से लेकर के और 7 रात्रि तक और ऐसे यहां पर बहुत से डीजे और म्यूजिक ग्रुप रहेंगे। फ्राइडे 5 June और सैटरडे 6 June ऑल टुगेदर फेस्टिवल फॉर द 24th keer इन बारन। और आप हर एक को खबर किया जा रहा है तमाम इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए वेबसाइट होता है stichtingsandesbaren.nl stichtingsandesbaren.nl उसी वेबसाइट पर पूरा की पूरा प्रोग्राम होते हैं को खबर किया जा रहा है तमाम इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए वेबसाइट होता है stichtingsandesbaren.nl stichtingsandesbaren.nl उसी वेबसाइट पर पूरा की पूरा प्रोग्राम होते हैं कि आने वाले

छह मिनट बाकी है सर है 10 बजने में और ये स्पेशल सॉन्ग मोहम्मद रफी की आवाज में मांग करने वाली है फेल्थोफन की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह ये गाना सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम में।

0: Isaalbeer, Milan, Zuiderpark Den Haag meer. Janneke Milan Summer Festival, Hoenewalle Heer, 21, 22 en 23 augustus. 21, 22 en 23 augustus, Milan Hoega, Zuiderpark, Den Haag, Sjehergi en Derbeem. De maam informatie abrigé, milansummerfestival.nl, milansummerfestival.nl. Uzi website per sabi informatie abrigé hem, aur kraam verhuur. के लिए भी कॉन्टैक्ट कीजिए उसी वेबसाइट के जरिए और अपना टिकट के लिए भी। तो एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन सुइडपार्क डेन हाग शहर में होगा 21, 22 एंड 23 अगस्त। नोट कीजिए अपना डायरी में, अपना एजेंडा में। हर दिल जो प्यार करेगा, हाँ तो वो तो गाना गाएगा, इसलिए कि वो बड़ी प्यार की मूड में है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। रोटरडम शहर की रहने वाली है शीला की ये मांगी हुई गाना द फिल्म संगम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश मनहर या कहिए मुकेश महेंद्र कपूर और लता प्रोग्राम में संगम फिल्म का नाम।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना।

मुकेश और महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म संगम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। रोटरडम शहर की रहने वाली हमेशा जो हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, रोटरडम की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी खूबसूरत गाना है जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म संगम से। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 40 साल से ज्यादा और मेयर दन फियर तक यार, और आहिस्ता आहिस्ता एनन फियर तक यार हो रहा है कि हमने ये प्रोग्राम रेडियो SBS का शुरुआत किया है उत्तराखंड शहर के अंदर में। और अभी तक हजारों हजारों सुनने वालों संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं।

बातिकम और खूबसूरत नगमे हमेशा और हमेशा आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। चलिए द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाला है रुद्रेश शहर का रहने वाला विजय। विजय तार किया है और माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं।

De Mighty Mookies die avans met je Cannabis program bij Pieskige je oude Utrechtse helka rechne vala. BJ ka mangi hui Cannabis program bij Pieskige je aap sabhi oude sabhi sunnivalu ki seva me asaro mithe ki je Cannab sabhi ne suna oude behet pasand kiya hem. सुनने वालों अभी 11 बजे से आप दरियाब कर सकते हैं सुपर मार्क टोको दवा के पास में सुपर मार्क टोको दवा के पास में अभी 11 बजे से आप दरियाब कर सकते हैं। हर रविवार भी दुकान खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम में 6 बजे तक। तो कोई भी सामान आप खरीदना चाहेंगे तो जरूर यहाँ पर आप तशरीफ फरमाइए। हर रविवार ढेर सारा सामान पर स्पेशल अनबीडिंग ही अनबीडिंग आप सभी के लिए बस होता है। हम आपको ले चलेंगे खासतौर पर डीमन शहर की ओर। वहां पर मनोज हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अभी अभी तार पर खबर किया है कि गर्मा गर्म कॉफी के साथ हमारा प्रोग्राम को सुबह से बस फॉलो कर रहे हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम सुने उसके बाद पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं और एक खास प्यार भरी गाना मांग किया है किशोर और आशा जी की आवाज में डीमन शहर के रहने वाला मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

करीबन शहर का रहने वाला मनोज, मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो भी थे मनोज, अपना मांगी हुई गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई किशोर एन आशा जी की आवाज में, आपके तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। हो सकता है कहीं कहीं बादल छाया हुआ मौसम होगा और वहां पर रिमझिम बारिश होगा या तो जोर तोर से बारिश होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा हिस्सा में झूरा मौसम होगा, धूप का मौसम।

reactions dit rijdt hem. आज की प्रोग्राम में फिल्म अभिमान, उसी फिल्म का एक गाना बस मांग किया है, डेल्फ्ट की रहने वाली आशिया की मांगी हुई गाना।

उसके बाद हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम की ओर, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीस इनफॉरमेशन की ओर, और उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं। गाना जो पेश होगा एंड फिल्म मिस मैरी, मोहम्मद रफी, पहले पैसा फिर भगवान गाना का बोल है, आखिरी पुरानी फिल्म का गीत, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम भी।

2020 में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

ही सिद्ध वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में।

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

प्यार फिल्म का नाम सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज की प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई है अभिजीत की आवाज में, अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है खास तौर पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

इसकी जरिए कुणाल गांजाबाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म डबोडी की ओर श्रेया घोषाल की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

पास में अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। असल उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। प्रभा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मीका सुक्कू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और शाम आपकी सेवा में मीका सुखो और साथियों के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। Het is 11 minuten over 1. Een hele goede middag. Rabbi Barkadin, 31 tarikh. Mijn programma is hier.

ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई है आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

लीला की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। रेडियो SBS के जरिए रविवार के खास दोपहर का प्रोग्राम है कुछ लोकल नखमे तकरीबन 2 बजे तक कहो ना प्यार है मैशिप प्रोग्राम में।

उम्र के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी शुद्ध वालों की सेवा में। शुद्ध वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सभी जो हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और

व्यावास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार रोहित और रायन की आवाज में ये गाना पेश किया जाए।

रायन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज की लोकल नगमे गाने का खास प्रोग्राम में एक आखिरी गाना पेश होगा और वो भी स्टीफन धर्मपाल के आवाज में। गाना के बाद होगा प्रोग्राम में खबरें, रिक्लाम, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीयस इंफॉर्मेशन।

नई आवाज में आपके लिए बस पेश की गई है। आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए भी प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

तले सुन वालों चले प्रोग्राम में एक आखिरी गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और इसी गाना के साथ हमें इशारा थोड़ा किया दीजिए। अभी ग्लेन के जरिए बस प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना और 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी। आती है सुबह, मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 7 बजे प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए इशारा थोड़ा किया दीजिए।

रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग नंबर। ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन। बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से, ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शरीर के अंदर से सालों से।

अतीफ अतीफ असलम के वास में भी आप सुनते हैं। और अब की बार सुनते रहना पद्मश्री मोहम्मद रफी साथ में आशिया भोसले के वास में।

अशोक खरे के पास में बस सुनते रहना, और इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से खबर शोस न्यूज फरके सिर्फ मासी, और उसके बाद में भाई थक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर राज्य SBS।

तीन बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है। फिर मिनटन 9:03 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ऑफर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

रामदेव चैतू के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बात सुनते रहना गिरधारी स्त्रात फ्लोइट से नदिया की राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना।

चोरी चोरी मिल जा गोरी, गिरधारी स्त्रात फ्लोइतुन फ्लोइतुर वाइदे से, हमारा बीरमान राजन, राजन गिरधारी का पसंद भी आप सुनते हैं।

शांति सी नंदन के पास में अभी आप सुनते और अब की बार सुनते रहना रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में।

बिना राम रघुनंदन रविंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में सुसी सुसी झिन्नो की पसंद सुनते रहना।

बंसुरिया बजाए के नचावे लंदलाला। सत्यानंद रेखा, सत्यानंद रेखा के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से।

कब से खरी जमुना के निकट पर। रामप्रसाद रामप्रसाद राम खिलावन के आवाज में भी आप सुन रहे थे। मौलान खिलावा दुनिया के हर एक कोने में, कोने कोने में लोगों हमेशा सुनते हैं। दया बे प्लस के जरिए और साथ में ऑनलाइन के जरिए।

रामदेव चैतु के बाद में सुनते रहना। के जिंदगी है क्या उड़ती हुई हवा, थाईलैंड पुकेट से सुरेंद्र का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

ये जिंदगी है क्या। पुकेट, पुकेट थाईलैंड से सुरेंदर, सुरेंदर का पसंद अभी आप सुनते हैं।

चार बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 4:05 लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

शंकर चंद्र बोस के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से। और अब की बार सुनते रहना माधो।

माधो माधो राम खिलावन के वास में अभी आप सुनते और अब की बार हीरालाल महावीर के वास में।

बंसुरिया बजाए के, महेश रेखा के पास में भी आप सुन रहे थे तनहा के रहने वाले इसला यंकी की पसंद।

के समधिनिया हतार खोजे चुन चुन के तैनाक से पेया पेया रमोतार की पसंद सुनते रहना।

राजू सिंह गुलाम के वास में भी आप सुनते हैं। Utrecht, Leidse Rijnse, Rajesh Udit Kapasan Sundarayna.

0: ऐसा जवानी
1: क्रिसम छेदी के आवाज में बस सुनते रहना
0: ऐसा जवानी
1: प्रबंध हेडल से हेन नारायण का पसंद सुनते रहना।

Inmiddels 4 minuten over 5. 5 बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS.

राजेश राम नारायण के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बात के फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी सुंदर पोपो के पास में

के फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सुंदर पोपो के वास में भी आप सुन रहे थे। विज्ञानवती चैतु के वास में सुनते रहना।

स्पेशली आशा और साथ में मुनिक की पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम को इस वक्त मोटर कार में रिक्टिंग आमस्टरडम।

स्टेफनी पूरन के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से के पारी करो जिंदगानी ऑन द वे टू एम्स्टरडम। आशा साथ में मुनी की पसंद भी आप सुनते प्रोग्राम से।

हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS और वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से। चाहे की फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए यानी कि हर एक रेडियो के काम के लिए आप तार कीजिए वो भी 24 घंटा लगातार, आज नहीं तो कल जरूर से आपके काम आ सकता है। 24 घंटा लगातार आप तार कीजिए वो भी 5 से 6 तक 5 से 6 तक।

0: राजू सिंह गुलाम के पास में। अभी आप सुन रहे थे के हमरे गौवा वाली गोरिया जब।
1: कौन गली गए शाम गए शाम,
0: के बता दो सखी कौन गली गए शाम। दुबराज प्रसाद के पास में।

इकाओ न गली गई शाम बता दो सखी दुबराज दुबराज प्रसाद के वास में भी आप सुनते आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त।

समाप्त होने पर आया, समाप्त होने पर आया आज के बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज पर के से फमासी और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशली रामलाल, दू यू हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wil je reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जान। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जान।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एंड कम्स आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेर्दर मेट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजों दो रेखा भारद्वाज कम दोरी टूट गईयां।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।